0: प्रिय अभिमान्यू।
1: Cerita yang ide sang pacang ngiring sidering arabini sang Abimanyu.